गौ ब्राह्मण को कर लाओ गोवर्धन ना जाय। तो टिटका तै जब माली ताल मिले छा खाय। अंतर पूजा।

0: है अपनती अपना आपे ही काजस्वरी है काजस्वरी है काजस्वरी है
1: पावड़ी आपे ही करना क्यों कल आपे ही तय तारी है देखे किता अपना तर कच्ची पक्की सारी है जो आया सो चल सी सब को यही बारी है जिसके जी प्राण है क्यों साइमन विसारी है अपन हथी अपना आपे ही काजस्वरी है।

ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद चक्र चिहन अर बरन जात अर पात नहिं जेहे रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत कहे चल मूरत अनुभव प्रकाश अमितोज कहिजै कोट इंद्र इंद्रान साह सहन गणिजै त्रिपवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन त्रिन कहत तो सर्वनाम कथय कवन कर्म नाम वर्णत सुमत कनहर बूंद बसुर मावल कुसुम बसंत गणंत न आवै रव सस किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावै रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के कब जन पल उन्हें जो गावै पल्ले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बन आवै गुर के चरण जी का निस्तारा समुंद सागर जिन खिन मह तारा कोई होआ क्रम रत कोई तीर्थ नाया दासी हर का नाम त्याया बंधन काटन हार स्वामी जन नानक सिमरै अंतर जामी बंधन काटन हार स्वामी जन नानक सिमरै अंतर जामी सुख टल गुर सेविया अहनिस सहज सुपाय दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत खसम दी नूर अरसो कुरसो चटिया तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पातशाह सिरसा दशा हो।
ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆਂ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹੁ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰਸ਼ਾਹ ਦਸ਼ਾਹ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆਂ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹੁ। ਸਤਨਾਮ

अंतर की गत तुम ही जानी, तुझ ही पाहे निबेरो, बख्श ले हो साहिब प्रभ अपने, लाख खते कर फेरो, प्रभ जी तू मेरो ठाकुर नेरो, हर चरण

रहाउ बीस बार बेअंत स्वामी उच्चो गुनी गहेरो काट सिलक कीनो अपनो

बेसुमार बेअंत स्वामी उच्चो गुनी गहेरो काट सिलक कीनो अपनो दासरो।

बिन मता सलोक पमन गुरु पाणि पिता माता तरत मात दिवस रात दोई दाई दाया खेल सगल जगत चंगियाँ बुरियाँ।

गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुटी नाल जिनी नाम ते आया गए मसकत।

ठाकुर कर तल तरिया, जन नानक बल बल सद बल जाइए, तेरा अंत न पारा वरिया। राग यासा महला चौथा, सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हर अगम अगम पारा सब त्यावै सब त्यावै तुद जी, हर सच्चे सिरजनहारा। सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दातारा, हर त्याव संतो जी सब दुख विसारन हारा। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी, हर एको पुरख समाणा, एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज विडाणा। तू आपे दाता आपे भुगता जी, हव तुद बिन अवर न जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख वखाणा। जो सी वह तुद जी, जन नानक तिन कुरबाणा। हर त्यावह हर त्यावह तुद जी, से जन जुग में सुखवासी। से मुक्त भये, जिन हर त्याया जी, तिन तूटी जम की फासी। जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जी, तिन का भउ सब गवासी। जिन सेविया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। से तन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत पंडार जी, भरे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहन तुद जी, हर अनक अनेक अनंता। तेरी अनक करे हर पूजा जी, तब तापे जपे बेअंता। तेरे अनेक पढ़े बहु सिमृत शास्त्र जी, कर क्रिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी, जो पावे मेरे हर भगवंता। तू आदि पुरख परंपर करता जी, तुद जेवड़ अवर न कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी, तू निश्चल करता सोई। तुद आपे भावे सोई वरता जी, तू आपे करे सोई। तुद आपे सृष्ट सब पाई जी, तुद आपे सृज सब गोई। जन नानक गुण गावे कर्तिक जी, जो सब सह का जानोई। आसा महला चौथा, तू करता सचियार मैडा साई। जो तो भावे सोई थीसी, जो तू दे सोई हो पाई रहाव। सब तेरी तू सबनी त्याया, जिसनों कृपा करहे तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मनमुख गवाया, तुद आप विछोड़िया आप मिलाया। तू दरिया सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे।
जी अजंत सब तीर अखेल, वियोग मिल विछुड़िया संजोगी मेल। जिसनु तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाण। जिन हर सीविया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर न कोए। तू कर कर विखह जानह सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला, तित सरवरड भईले निवासा। पानी पावक तिन्हे किया, पंक जो मोह पग नहीं चाले। हम देखा तह डूबी अले, मन एक न चेत समूढ़ मना। हर विसरत तेरे गुण गलिया रहाओ। नाहं जति सति नहीं पढ़िया, मूर्ख मुगदा जन्म भया। प्रणवत नानक तिन की सरना, जिंतो नाही विसरिया। आसा महला पंजवा, भई प्राप्त मानुख देहुरिया। गोविंद मिरन की यह तेरी बरिया, अवर काज तेरा कितै न काम। मिल साध संगत भज केवल नाम। सरंजाम लाग भव जल तरन कै, जन्म वृथा जात। रंग माया कै रहाओ, जप तप संजम धर्म न कमाया। सेवा साधन जान्या हर राया, कहो नानक हम नीच करम। शरण परे की राख हो शर्मा, जप तप संजम धर्म न कमाया। सेवा साधन जान्या हर राया, कहो नानक हम नीच कर।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कवियो बाच बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दै रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तव चरणन मन रहै हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरी दुष्ट सवै तुम कावहो आप हाथ दे मोहे बचावहो सुखी बसै मोर परवारा सेवक सिख सवै करतारा मोर अच्छा निज कर दे करिया सब बैरिन को आज संगरिया पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रहै प्यासा पूर्ण होए

एक बार जन तुम्हें संभारा, काल फास्ते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहार कहा, दारिद दुष्ट दोख ते रहा। खड़ग केत मैं शरण तिहारी, आप हाथ दैले हो बारी। सर्ब ठार मोह हो सहाई, दुष्ट दोख ते ले हो बचाई। खड़ग केत मैं शरण तिहारी, आप हाथ दैले हो उबारी। सर्ब ठार मोह हो सहाई, दुष्ट दोख ते ले हो बचाई। सवैया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहे मत एक न मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सबै, बहु भेद कहें हम एक न जान्यो। श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैं न कहो सब तो हे बखान्यो। दोहरा सगल द्वार को शाड कै, गहो तुहार द्वार। बाही गहे की लाज अस, गोविंद दास तुहार। सगल द्वार को शाड कै, गहो तुहार द्वार। बाह गहे की लाज अस, गोविंद दास तुहार। राम कली महला तीजा, आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुरता पाया सहज सेती। मन वजियां वादाइयां, राग रतन परवार परियां। शब्द गावने आईयां, शब्दोता गावहो हरी केरा। मन जिनी वसाया, कह नानक आनंद होआ, सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना। अंगीकार यो करे तेरा, कार्य सब सवारना। सबना गल्लां समरत स्वामी, सो क्यों मनो विसारे। कह नानक मन मेरे, सदा रह हर नाले। सचे साहिबा क्या नाही घर तेरा, घर तां तेरा सब किश है। जिस देह सो पावे, सदा सिफत सला तेरी, नाम मन वसावे। नाम जिनकै मन वस्या, वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही।

करते रह। सच नाम मेरा आधार, सच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया, कर शांत सुख मन आए वसया, जनिशा सब पुजाइया। सदा कुर्बान किया गुरु विट हो, जिस दियाँ ये वडियाइया। कह नानक सुनो संत, शब्द धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधार। वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै, घर सुभागै शब्द वाजे, कला जित कर धारिया। पंच दूत तुदवस कीते, काल कंटक मारिया। तुर करम पाया तुद जिन कौ, से नाम हर कै लागे। कह नानक तह सुख होआ, तित कर अनहद वा।

उत्तरे सगल विसूरे दुख रोग संतापी उत्तरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पे सर से पूरे गुर ते जानी सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया भरपूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया भरपूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे मुंदावणी महला पंजवां थाल विच तिन वस्तु पईयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सब सधारो जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए उधारो एह वस्त तजी नह जाई नित नित रख और तारो तम संसार चरण लग तरिया सब नानक ब्रह्म पसारो श्लोक महला पंजवां तेरा कीता जातो नाही मैं ना जोग कीतो तरस पयोई तरस पया मेहरामत होई सतगुर सज्जन मिलिया नानक नाम मिलै तां

तरस पया मिहरामत होई सतगुर सज्जन मिलिया नानक नाम मिलता जीवा तन मन थीवै हरिया वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

अदरख दास पाठ की लाज। जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की, हर नाख सफारी कर आज। फन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी, छीनत वस्त्र दीन बहु साज। सो दामा अपदा ते राखिया, गन का पढ़त पूरे ते काज। श्री सतगुर सुप्रसन्न कल युग होए, रखो दास पाठ की लाज। गुरपार सहम लो मिल कंचन होया राम, ज्योति ज्योत मिलाए काया गढ़ सोहया राम, काया गढ़ सोहया मेरे प्रभ मोहया। क्यों सास गिरास विसारिया, अदृष्ट गोचर पकड़िया गुर शब्दी। हो सतगुर कै बलिहारिया, सतगुर आगे सीस भेट देओ। जे सतगुर साचे भाव।

आपे दया करहो प्रभ दाते, नानक अंक समावे। सतगुर आगै सीस भेट देओ, जे सतगुर साचे भावै।

अहनिस सहज सुपाय दर्शन परसया गुरु का जन्म मरण दुख जाय होवे सिफत खसमदी नूर अरसों कुरसों चटिया तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाह जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावी साह सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाह जिस पास बैठिया सो

सोरठ महला पंजवा हमरी गणत न गणिया काई अपना बिरद पछाण हाथ दे राखे करे

पुल्ले सुत धारा स्यो प्रीत लगाई, एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखहु शरणाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखहु शरणाई। सो कहाउ टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुभाई। दर्शन परसिया गुरु का, जन्म मरण दुख जाई। होवै सिफत खसम दी, नूर अर सह कुर सह चटिया। तुद डिठे सच्चे पात साह, मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पात साहु, सिर साहां दै साहु। जिस पास बैठे आसो ही है, सब ना दा वेसाहु। सज्जन सच्चा पात साहु, सिर साहां दै साहु। जिस पास

नाओ दुई कुदरत साजिए कर आसन डिठो चाओ दाता करता आप तू तुस देव है करह पसाओ तू जानो ई सब सह दे ले सह जिंद कवाओ कर आसन डिठो चाओ।

पौड़ी सचा साहबे तू जिन सचो सच वरताया, जिस तू देह तिस मिले सच ता तिनी सच कमाया। सतगुर मिलिया सच पाया, जिन कै हृदय सच वसाया। मूर्ख सच ना जाननी मनमुखी जन्म गवाया।

महला पहला, कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप, कूड़ माड़ी, कूड़ वैष्णहार, कूड़ सोना, कूड़ पा, कूड़ पैनहार।

पाप दो राजा मैं तकूढ़ हुआ सकदार। काम ने सत पुछिए बह बह करे विचार। अंधे रईयत ज्ञान बिहूणी पाहे परे मुरदार। ज्ञानी नचे वाजे वावे रूपरे सिंगार। उचे कुकह वादा गावे जोदा का विचार। मूर्ख पंडित हिकमत हो जित संजय करे प्यार। धर्मी धर्म करे गवावे मंगे मुख द्वार। जति सदावे जुगत ना जाने छड़ बहें घर बार। सबको पूरा पे होवे घट ना कोई आखे। पत परवाना पिछे पाईए ता नानक तोलिया जापे। वधी सुवजग नानका सच्चा वेखे सोए। सबनी छाला मारी।

को तुध पाया तांतनी खसम ते आया इना जनता के बस किछ नाही तुधवे की जगत उपाया एक नानू तू मेले एक आप हो तुध खुआया गुर कृपा ते जानिया जिथे तुध आप बुझाया सहज ही सच समाया सहज ही।

योग शब्द ज्ञान शब्द वेद शब्द ब्राह्मण है, खत्री शब्द सूर शब्द सूद्र शब्द प्राकृत है, सर्व शब्द एक शब्द जे को जाने पेयो, नानक ता का दास है सोई निरंजन देओ। एक कृष्ण सर्व देवा, देव देवा ता आत्मा आत्मा वास, देवा सजे को जाने पेयो, नानक ता का दास है सोई निरंजन देओ।

जे मत तर लोचन चित भगत कंबीरे जानी रुक मांगद करतूत राम जंपो नित पाई अमरीक प्रहलाद शरण गोबिंद गत पाई तै लोभ क्रोध तृष्णा तजी सुमत जल जानी जुगत गुर अमरदास निज भगत।

लिखै भगत पाए भरपूर हृदय उचरै करतारै गुर गौहर दरियाओ पलक डुबंत तारै नान।

0: चित चित अरदास कहूं पर कह भी ना सकूं। सर चिंतु पाल सात संगत हों तको तेरे हुक्म पे निशान तो करो साहेब की सेवा। जब गुर देखे शुभ दिष्ट नाम करता मुख मेवा। अगम अलख कारण पुरख जो फरमावे सो कहूँ। गुरु अमरदास कारण करना जिव तो रख तिव
1: पिखे के गुर ज्ञान अर ध्यान तत् स्यो तत् मिलावै सच सच जानिए इक चित है लिवलावै। काम क्रोध वस करै पवन उड़न तना तावै निरंकार कै वसै देश हुकम बुझ विचार पावै। कल मैं रूप करता पुरख सो जाने जिन किछ कियो गुर मिलियो सोए पिखा कह सैज रंग दर्शन दियो। रहो संत हो टोल साध बो तेरे डिठे सन्यासी तपसिए मुखो पंडित मिठे। बरस एक हो फिरियो किन्हें परचो लायो कहत्या कहती सुनी रैत को खुशी ना आयो। हर नाम छोड़ दूजा लगे तिनके गुनों क्या कहो गुरुदेव मिलायो पिखिया। जीव तू रखे तिव रहो जीव तू रखे तिव रहो।
2: पहर समाध सुना हो ज्ञान है आसन चढ़ो तरामत नख कर गयो भगत सी ले सर लड़ियो। पै निरपो हर अटल मन शब्द गुर ने जागड़ियो काम क्रोध लोभ मोह अपत।

0: प्रभ दातो दातार परयो जाचे के कसरना मिले दान संतरेन जय लग पाओ जल तरना बिनत करो अरदास सुनहो जे ठाकुर पावे देहो द्रस मन चाओ भगत ओ मन ठहरावे भले ओ चिराग अंध्यार में है सब कल उदरे एक नाम तरम प्रकट सगल हर पवन में है जन नानक गुर पार ब्रह्म।
1: श्री गुरु साहिब सब उपर करी कृपा सतयुग जिन त्रूपर श्री प्रहलाद भगत उदरियं हस्त कमल माथे पर तरियं अलख रूप जी लख्या ना जाई साधिक सिद्ध सगल सरनाई गुर के बचन सत जी तारो मानस जन्म देहे निस्तारो गुर जहाज खेवट गुरु गुर बिन तरिया न कोए गुर प्रसाद प्रभ पाइए गुर बिन मुक्त ना होए गुर नानक निकट बसै बनवारी तिन लहणा थाप जोत जगतारी लहणे पंथ धर्म का किया अमरदास पल्ले को दिया तिन श्री रामदास सोडी थिर थप्यो हर का नाम अखै निदे अप्यो अप्यो हर नाम अखै निद चोह जुग गुर सेवा कर फल लहियं बंदे जो चरण शरण सुख पावे परमानंद गुरमुख कहियं प्रतख देह पार ब्रह्म स्वामी आदि रूप पोखण परण सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारण तरण।
2: जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो ताते अंगद भयो तत् स्यों तत् मिलायो अंगद कृपा तार अमर सत गुर थिर कियो अमरदास अमरत शतर गुर रामै दियो गुर रामदास दर्शन परस कहे मथुरा अमृत बैण मूर्त पंच परमान पुरख गुरु अर्जुन पिखो नैण।
3: जाम गुरु होए वाले।

0: ज्ञान और ध्यान अनन पार जाम गुरु है वाले शब्द साखी सो सच्चे कार जो गुरु गुरु अहनिस जपे दास भट बेनत कहे जो गुरु नाम रिद में तरे सो जन्म मरण दो तेरा है।
1: तू सतगुरु चों जुगी आपे आपे परमेश्वर सुर नर साधिक सिद्ध सिख सेवंत तुरे तुरे

0: अग्यंतक बदे न सद कब गुरु रामदास तेरी शरण।
1: सत सूरो सील बलवंत सत पाए संगत सगन गरु मत निर्वैर लीना जिस तीरज तुर तवल तुजा सेत बैकुंठ बीना परसे संत प्यार जेह कर तारे संजोग सत गुरु सेव सुख पायो अमर गुर की तो जोग हम

सुकह टलगुर सेविया अहनिस सहज सुपाय दर्शन परसय गुरु कै जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत खसामंदी नूर अरसों कुरसों चटिया तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पातशाह सिरशांद शाह जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावे साहो सज्जन सच्चा पातशाह सिरशांद शाह जिस पास बैठिया

जी की फतेह। जैतसरी महला नौवा। हर जो राख ले हो पत मेरी, जम को त्रास भयो उर अंतर।